गावन तुदनो साध बिचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडत पढ़न रखी सुर, जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले, गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले, गावन तुदनो जोद महाबल सूरा, गावन तुदनो खाणी चारे, गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे, से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते तुदनो गावन से मैं चित ना आवन, नानक क्या बिचारे, सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई,

माया जिन उपाई कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा

गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिला।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एको ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाणा हर त्यावह तुद जी से जान जुग मैं सुख वासी से मुकत पए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता

का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मेंडा साई, जो तौ पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हों पाई। रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनू तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ै पई ले निवासा। पानी पावक तिन है किया, पंकज मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतस मूड़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या। मूरख मुगधा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवां,

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरे करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा।

ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव ना पावत बेदा। ताको

असिख संगरु दोष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करु रण कहता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दोष्ट दुखत हवै मरे।

आए है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके पाप तनक मह हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभार।

दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मानेओ। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कहे हम एक न जानेओ। श्रीयस पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे ओ सब तोहे बखानेओ। दोहरा

क्या नाहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर तहारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटुक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वसत तजी नह जाई नित नित रख उर थारो। तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पायोई। तरस पया मेहरामत होई सतगुर।

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कुए नाहे, उथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरै छड जाहे। पौ जल बिखम असगाह गुर शब्दी पार पाहे। जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोई न जाए जे आवै तु दयाहे। सलोक महला पंजवां अंतर गुर आराधना, जेहवा जप गुर नाओ। नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर से तीरतया दरगह पाइय ठाओ। कहो नानक कृपा करे जिसनों ए वाथ दे। जग मह

जिससे मरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी

सत्संग जी, बोलो जी। वाहे गुरु, वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार्षिक प्रतिपाशी दसवीं प्रथम भगवती समर कह गुरु नानक लई त्याय। फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय। अर्जुन हरगोबिंद सिमरन श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याज सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कारण उन्हें दयावता है। सब ताई हुए सहाय दसवें पाचिया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब ताई हुए सहाय। दसा पाचिया के पुत्र आत्मा श्रु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पार दर दर के घर से बोलो जी। वाहे गुरु। आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटिया जपिया तपिया जिन्हें नाम जपया वन छकिया दे चलाई ते वाही देख निड कीता ते ना प्यार चार नी कमाई ते अंदर की बोलो जी। वाहे गुरु। जन्ना सिंघा सिंघणिया धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुआईया चरखड़िया ते चढ़े आ रहे नचराए गए गुरुद्वारे सेवा ते कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं आ रहा सी किसी ते कैसा सासा संग निभाया तिना नी कमाई दे अंदर की बोलो जी। वाहे गुरु। गुरुद्वार बोलो जी। वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। नाम चेता है चित आमण का सत का सब सुखो है। जहां जहां गुरु खालसा साहब तहत देखते की फतेह ब्रत की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोलबाले बोलो जी। वाहे गुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौंकिया चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहे गुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की बुलवाज पंथे सदा सहाय दता दियो। गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हें आप दे पंथ नूं छोड़िया गया दर्शन दाते सेवा संभाल दा अपने खालसा जी नूं बख्शो। हे नोटियां दी ओट गुरु ने आसरियां दे आसरे गुरु तन तन ग्रंथ तार पिता जी आपके चरण कामना अरदास ने तारे आपने बख्शिश की गुरु नवाज जी आपके चरण पितर गुरबाणी सुखमणी साहब ने संपूर्ण पाठ दिता अपना संध्या समय जान के आप चरण सोरदार रह रहा सब पाठ किते ने कृपा करो हुईया भुला चुका माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सच खंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदान कृपालता करो जी। अगो तो शोध से पितर बाणी तारी मन बुद्धि बख्श करो बीमारी इस खुशी आप जी बख्शिया दाता पिता खराब शायद देखा तैयार कर हाल ततार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संगत के असरा लायक हो जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जब बख्शिश करो ततार जी। दुखा कलेशा रोगां का नाश करो सुखां का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। ततार जी आप चरणा सेवा कर रहे सारे टहलीए सिंघा सिंघणिया तंदुरुस्ती बख्शो चटकला बख्शो अते सदा ही इस तरह अमृत चरणा सेवा की भावन बख्शी पालता करो गरीब नवाज जी कृपा ततार अमृत हेत लैके दर से आई हैं साफ संगत दर प्रवान करो घड़िया खिलाओ संगतों का दर से तिर फुर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी। विवाह कृपा करो सेव कम खालसा पंथ एक दस भाग प्यार जी बख्शिश करके सत दोष दास बख्शो चैनल ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान दीवान फतेह बख्श करने की बात करो जी। गरीब नवाज कृपा करो दूर दुराज घर बैठिया पिता गीत श्रवण करनिया सारिया संगत की हाजरियां प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ तारा अपने कृपा की संगत उदो बख्शे संगत आदि चैनल धनवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगत संगत माया पेटा कर चैनल प्रवान करो बख्शा साहब की कमाइया सबल करो कार्य वादार सब संगत दुभकामना सबों का पूरी करो जी। मेरा कर आओ सेवा प्रवान करो पूरा चुका बख्शो पवित्र ग्रामीण बख्शे उपरंत अज के शाम की कथा की दबारा मुतावा से आगा बख्शो रहने का सवार की चैनल आदि बनाओ शुद्ध अते पितृ सेवा लाने की बात दतार सही प्यारे मेरे जन दाता नाम जता नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने। वाहिगुरु जी का खालसा।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड बिख बिख खाई। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा सो प्रीत लगाई।

राखो शरणाय, दंडौत बंदन अनिकवार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ, सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो, कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रख है ता राम भज, नाहे ता बिनठी बात, कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रख है ता राम भज, नाहे ता बिनठी बात, कबीर केसो केसो कुकी है, ना सोइए असार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार, कबीर काया कजली बन भया, मन कुंचर मै मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत, कबीर काया कजली बन भया, मन कुंचर मै मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या वेले दे गुरमत दीवान दी हाजरी भर रहे गुरु सवारे सतसंगी जनो, सतगुरु जी दे अमृत बचन आपां कीर्तन सरवण कर रहे सां। लड़ीवार विचार भगत कबीर साहब दे शलोकां दी आपां कर रहे हां। तीन शलोकां दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है। इन्हां दे अखरी अर्थ और समय अनुसार व्याख्या जेड़ी कल विचार आपां कर रहे सी उस शलोक नूं अगे आप संगत दे सन्मुख बेनती कर सकां। आप जितने सतगुरां दे हजूर दरबार विच बैठ के कथा सुन रहे हो जां अपने घरां विच बैठ के देश विदेश विच, क्योंकि आधुनिक समा ही ऐसा है कि इस युग विच रहिंदिया इंसान कदों किते भी बोले एक खिन विच चौं कुंटां विच उहदी तस्वीर ते उहदी आवाज पहुंच जांदी है। आप जो घरां

शब्द क्या कि बेटा नानक इनी रात गई आराम कर विश्राम कर अजे मां जी बोल के हटे ते जन्म साखी वाला कहिंदा इक्को दम हनेरे विच आवाज ही उधरों बदल गजिया बिजली चमकी उधरों एक आवाज सुनाई दिती प्रियो प्रियो प्रियो ते बाबा जी कहिंदा बाबा बोलिया मां मेरा शरीक तां अजे जागदा है किड्डा प्यारा शब्द है वैसे गुरबाणी मेरा शरीक तां अजे जागदा है हजूर ने कहा माता जी कहने मैं वारी जावा मेरे पुत दा शरीक कौन कह लगे मां देख फिर आवाज आई प्रियो प्रियो कह लगे इसका प्यारा तो नेड़े है हुणे बरसेगा मेरा प्यारा तो बहुत दूर मैं नहीं सौवांगा जे ये चैन नाल नहीं बहिंदा असल च ये शब्द की उथानका है चातरक मीन जल ते सुख पावे पावह सारंग शब्द सुहाई मलार राग का शब्द है जी चातरक मीन आ चातरक जेड़ा है ते दूजी मच्छी जल ते सुख पावे जल ही ते सुख पावे सारंग शब्द सुहाई सारंग दर ते खरन सारंग दर ते बबीजा भी कह गया सारंग दर तनुख भी कहती सारंग पानी आप पढ़ने इत सारंग का अर्थ है हरन के मच्छी ते चातरक पानी करके जींदे पया ते घंटा हेड़ा जेड़ा है उदी आवाज सुन के हरन जींदा पया रहन बबीया बोलियो मेरी माई कबीर केसो केसो कुकी है मां रहन बबीया बोलियो मेरी माई लोचन तार ललता बिलाती दर्शन प्यास रजाई अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सकू बिन मिला नींद ना पाई केसो केसो कुकी है आवाज दिती मां देख अगे बड़े प्यारे शब्द लिखे मां दी जी ना अपना कभी सांझे नहीं वो किते अच मैं याद आ गया जदों क्या मां मेरा शरीक तो जागता है ये भी बोलता है मैं भी बोलांगा अगे पता की क्या कहन लगे धन्न परमेसर मेरा नानक पुत्र है किड्डा प्यारा शब्द धन है परमेसर मेरा नानक पुत्र है ते तुरद्या तुरद्या कहने परमेसर जी मेरे नानक की प्रीत औड़क तक निब जाए देखो ते मां जी का जरा भाव दिता है मेरे पुत्र की प्रीत निभे इन्हें कह लो भाई वीर सिंह भावे इच्छा बल बारे कहते ने केसो केसो कुकी है वो कहते सीने खिच जिन्हों ने खाधी वो कर आराम नहीं बहिंदे इत प्यारो खिमा कर दियो मैं तेनों अज मैनू डॉक्टर साहब कह रहे सां जब जी साहब का पाठ नहीं लोग सवेरे करते हो साड़ी हालत आ कितने आना केसो केसो कुकी है बख्श दया जी मैं तर्क नहीं कर रहा मैं सच्चाई कहना असी अपनी गल करिए साडे बंदे मैं किसी दे तर्क नहीं करदा कीर्तन करना कथा करनी वखरी गल है पर गुरु नूं रिझाण वास्ते आपां की कर रहे हां कदी रात जाग के तां देखिए मैं खिमा करियो मैं हंकार च नहीं शब्द कहिंदा अठ नौ घंटे लगातार जागदे होईए बारह घंटे तन शरीर जिहड़ा थक जांदा है बंदगी च तुसी सारी रात जाग के देखो सवेरे बिल्कुल तरोताजो होएंगे क्योंकि सिमरन च इन्नी वड्डी ताकत है गुरु साहब ने यह शब्द कहा भी पुकार तो सही प्राणा तो पुकार पपिया जो पुकार दा ना चेते रखियो एक साडे बड़े गुरमुख विद्वान हुए ने भाई शेर सिंह जी कश्मीर वाले मैं उन्हां दीआं दो किताबां बहुत पसंद करना एक आत्म दर्शन ते एक वाहिगुरु दर्शन बड़िया प्यारियां दशमेश बाणी ते उन्हां किताब लिखी छोटी जी मैनूं हुण मिली पिछे जे वो कहिंदे सन जदों पपिया कदी पुकारदा ना बस उसकी आवाज की उसकी कूह किन्नी दर्द भरी है कि जिवें एक मां पुत्र की लाश को दर्द भरे वहन पाती हो चातरक कली पंछी तुरै चातरक ते एक अवस्था है आप जी एक पाठ कर दियो फोने विच चातरक चित सुचित चातरक चित सुचित सो साजन चाहिए चातरिक एक अवस्था है वो तो पंछी है जी सिख चातरक जदों बंद है इसे करके इस अवस्था नूं उस गुरमुख नाल जोड़िया बाबिया अमृत वेला बोलिया तां दरसुनी पुकार मेघै नूं फरमान हुआ वरसो कृपा तार मैं बेनती करा चातरक चित सुचित सो साजन चाहिए जे सज्जन नूं मिलना चाहना है ना इस तरह पुकार जिवें चातरक पुकार।

दसों पातशाह की आत्मक जोत धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीओ गरीब नवाज आप जी ने अपार बख्शिश मेहरामत कीती उदम बख्शिश कीते गरीब नवाज आप जी की कृपा सदका पावन पवित्र हजूरी अंदर

నమ అష్టపది సిమరవ సిమర సిమర సుఖ పావవ కల్ కలేశ తన మహి మిటావవ సిమరవ జాస బిసంబర ఏకై నామ జపత అగణత అనేకై వేద పురాణ సిమ్రత సోదాఖ్యర కీనే రామ నామ ఏక ఆఖ్యర కినకా ఏక జిస జీ బసావై తాకి మహిమా గని న ఆవై కంఖీ ఏకై దర్స తుహారు నానక ఉన సంగ మోహే ఉధారు సుఖ మనీ సుఖ అమృత ప్రభ నామ భగత జనా కై మన బిసరామ రహావ ప్రభ కై సిమరణ గర్భ నా బసై ప్రభ కై సిమరణ దుఃఖ జమ నసై ప్రభ కై సిమరణ కాల్ పర హరై ప్రభ కై సిమరణ దుష్మన టరై ప్రభ సిమరత కశ బిఘ్న న లాగై ప్రభ కై సిమరణ ఆనందిన జాగై ప్రభ కై సిమరణ పౌ నా వ్యాపై ప్రభ కై సిమరణ దుఃఖ నా సంతాపై ప్రభ కా సిమరణ సాధ కై సంగ సర్వ నిధాన నానక హర రంగ ప్రభ కై సిమరణ రిద్ధ సిద్ధ నౌ నిద్ ప్రభ కై సిమరణ జ్ఞాన ధ్యాన తత్ బుద్ధ ప్రభ కై సిమరణ జప తప పూజా ప్రభ కై సిమరణ బినసై దూజా ప్రభ కై సిమరణ తీర్థ ఇస్నానీ ప్రభ కై సిమరణ దర్గహ మానీ ప్రభ కై సిమరణ హోయ సో భలా ప్రభ కై సిమరణ సుఫల ఫలా సే సిమరహ జిన ఆప సిమరాయ నానక తాకై లాగో పాయ ప్రభ కా సిమరణ సబ తే ఉచా ప్రభ కై సిమరణ ఉదరే మూచా ప్రభ కై సిమరణ తృష్ణా బుజ్జై ప్రభ కై సిమరణ సబ కిస సుజ్జై ప్రభ కై సిమరణ నాహీ జమ త్రాసా ప్రభ కై సిమరణ పూర్ణ ఆసా ప్రభ కై సిమరణ మన కీ మల జాయ అమృత నామ రిద్ మాహే సమాయ ప్రభ జీ బసై సాధ కీ రసనా నానక జన కా దాసన దసనా ప్రభ కో సిమరై సే ధనవంతే ప్రభ కో సిమరై సే పతవంతే ప్రభ కో సిమరై సే జన ప్రవాన్ ప్రభ కో సిమరై సే పురుఖ ప్రధాన ప్రభ కో సిమరై సే బిహ్మో తాజీ ప్రభ కో సిమరై సే సర్వ కే రాజీ ప్రభ కో సిమరై సే సుఖవాసీ ప్రభ కో సిమరై సదా అబినాసీ సిమరణ తే లాగే జిన ఆప దయాలా నానక జన కీ మంగర వాలా ప్రభ కో సిమరై సే పర ఉపకారీ ప్రభ కో సిమరై తిన సాధ బలహారీ ప్రభ కో సిమరై సే ముఖ సుహావే ప్రభ కో సిమరై తిన సుఖ బిహావై ప్రభ కో సిమరై తిన ఆత్మ జీతా ప్రభ కో సిమరై తిన నిర్మల రీతా ప్రభ కో సిమరై తిన అనద కనేరే ప్రభ కో సిమరై బస హై హర నేరే సంత కృపా తే అన దిన జాగ నానక సిమరణ పూరై భాగ ప్రభ కై సిమరణ కార్జ పూరే ప్రభ కై సిమరణ కబహు న చూరే ప్రభ కై సిమరణ హర గుణ బాణీ ప్రభ కై సిమరణ సహజ సుమానీ ప్రభ కై సిమరణ నిహచల ఆసన ప్రభ కై సిమరణ కమల బిగాసన ప్రభ కై సిమరణ అనహద చునకార సుఖ ప్రభ సిమరణ కా అంత న పార సిమరహై సే జాన జిన కో ప్రభ మయా నానక తిన జాన సరణీ పయా హర సిమరణ కర భగత ప్రగటాయ హర సిమరణ లగ భేద ఉపాయ హర సిమరణ పయ సిద్ధ జతి దాతే హర సిమరణ నీచ చహకుంట జాతే హర సిమరణ ధారీ సబ తరణా సిమర సిమర హర కారణ కరణా హర సిమరణ కీయో సగల అకారా హర సిమరణ మై ఆప నిరంకారా కర కృపా జిసే ఆప బుజాయా నానక గురుముఖ హర సిమరణ తిన పాయా సలోక దీన దరద దుఃఖ పంజనా ఘట ఘట నాథ అనాథ శరణ తుమారీ ఆయో నానక కీ ప్రభ సాథ అష్టపది జయ మాత పితా సోత మీతన పాయి మన ఊహా నామ తిర సంగ సహాయ జయ మహాపయాన దూత జమ దలై తహ కేవల నామ సంగ తేరా చల్లై జయ ముష్కల హోవై అత భారీ హర కో నామ ఖిన్ మాహే ఉధారీ అనక పునః చరణ కరత నై తరై హర కో నామ కోట పాప పర హరై గుర్ముఖ నామ జపహు మన మేరే నానక పావహ సుఖ కనేరే సగల శ్రేష్ఠ కో రాజా దుఖియా హర కా నామ జపత హోయ సుఖియా లాఖ కరోరీ బంధ నా పరై హర కా నామ జపత నిస్తరై అనేక మాయా రంగ తిఖ నా బుజావై హర కా నామ జపత ఆగావై జిహ మార్గ ఇహో జాత అకేలా తహ హర నామ సంగ హోత సోహేలా ఐసా నామ మన సదా త్యాయ నానక గురుముఖ పరమ గత పాయ
छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तह पार पराही। अनक बिघन जय आय संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनेक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हौ मैला मल कब हुना धोवे, हर का नाम कूट पाप खोवे। ऐसा नाम जप हु मन रंग, नानक पाइये साधक संग। जिह मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जिह पेंडै महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तेरा को न सियानु, हर का नाम तह नाल पशानु। जय महापयान तप तबह काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहा त्रिखा मन तुझ आकरखै, तह नानक हर हर अमृत बरखै। भगत जना की बरतन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रति रंग एक, नानक जन कै बिरत बबेकै। हर का नाम जन कौ मुकत जुगत, हर कै नाम जन कौ त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै माल खजीना, हर धन जन कौ आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग केते तरे। पार जात एहु हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुरत सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुल काश अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जान कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान। जोग अभ्यास कर्म त्रम किरिया, सगल त्याग बन मधे फिरिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पूर्ण दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वरत नेम करै बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड प्रथमी फिरै चर जीव, महा उदास तपीसर थीव। अगन माहे होमत परान, कनक असव है वर भूम दान। नेवली कर्म करै बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौ पी होमै मैल न जावै। हर के नाम संसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ दे छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन स अर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही कौ बहु साधना करै, मन ते कबहु न बिखया टरै। जल धोवै बहु देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उधरे पतत बहुमूच। बहुत सयाणप जम का पौ ब्यापै, अनक जतन कर त्रिशन ना त्रापै। पेक अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगै नहीं सिजै। छूट सुनाही ऊब पयाल, मोहे ब्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै। जे को आपु ना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय साध गावै। जे को अपनी शोभा लूरै, साध संग एहो मैं शूरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरणी पर। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा।
सकल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटाय अभिमान आपस का जो जाने नीचा सोगनिय सब ते ऊंचा जाका मन होए सगल कीरीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपुने ते बुरा मिटाना पेखै सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निरतन कौ तन तेरो नाऊ न थावे कौ नाऊ तेरा थाऊ नि माने कौ प्रभ तेरो मान सगल कटा कौ देवो दान करण करावण हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपने गत मित जन हो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्त तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम मैं उद्दम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान तेह ओ उत्तम थान नानक जिहे घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार ए अन्या सो प्रभ सदा संभाल जिन किया ते सचीत राख नानक निबहि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अगन में जिने उभारिया बार बविस था तुझे प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साक सैन मुख्य पयाओ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु न पूजै बख्श लेहो तौ नानक सीजै जे प्रसाद धर ऊपर सुख बसै सोत प्रात मीत बंता संग हसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समगरी संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना ते सत्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे नानक काड लिहु प्रभ आपे आद अंत जो राखन हार तिस्यों प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नव निध पावै तास्यों मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर साध सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगह मान तिसै बिसारै मुगद अजान सदा सदा ए भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर करमानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर तब प्रीत भस्म संग होए अंधकूप मैं पतत बिकराल नानक काढ़ लिहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शपश नाहे काश करै छपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अग्न बाहर तन सुवाग गल पाथर कैसे तरै अथा जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक तेजान सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गै लेहो ओढ़ नि बहावै कहा बुझारत बूझै डोरा निस कहियै तौ समझै पूरा कहा बिसन पद गावै गुंग जतन करै तौ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत ऊहा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सो आवै न चीत जो बैराई तास्यों प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मन मनै प्रतीत काल न आवै मूडे चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बिकार महा लोभ त्रो याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर करम तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरा सूत्र तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक देन हार प्रभ छोड़क लाग है आन सो आए नानक कहू न सी जई बिन नावाए पात जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्त कारण बिखोट गवावै एक पी न दे दस पी हैर ले तौ मूड़ा कहो कहा करे
जिस ठाकुर से उनाही चारा ताको की जय सदनम सुकारा जा कै मन लागा प्रभ मीठा सर्ब सुख ताहु मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया अगंत साहु अपनी दे रासु खात पीत बरतै आनंद उलास अपनी अमान काश बाहुर साहुले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत तो आप ही खोवै बौरस का विश्वास न होवै जिसकी बस्त तिसे आगै राखै प्रभ की आज्ञा मानै माथै उसे चौगुन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर पर होवत जन अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओ बिनसै ओ मन पछोतावै जो दिसै सो चालन हार लपट रहयो तह अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावै नेह ताको हाथ न आवै केह मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तान तन कुटंब सबाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज जोबन तन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती असब बस्तरा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिरै मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बासलेत बिकारा बिन बूझे मिथ्या सब पए सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरण दिन रैन बिरथा बेहाय मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो किरपन के नरारथ दाम धन धन ते जन जेहे घट बस्यो हर नाउ नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर काश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर भेख ना काहू पीन अवर उपदेसै आप ना करै आवत जावत जन मै मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा ओ पाव सियानप सगल ते रहत सब काश जाने आत्म की रहत जिस पावै तिस लय लड़ लाए थान थनंतर रहया सुमाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरि सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शत ही अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावै तिस को सिमरत परम गत पावै जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग कत अवर लोभावै जे प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जे प्रसाद तुझ सब को मन मुख ताको जस रसन बखानै जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जापत दरगह मान पावै नानक पात सेती घर जावै जिह प्रसाद आरोग कंचन देही लिवलावो तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल शिदर ढाके मन सरणी पारो ठाकुर प्रभ ताकै जिह प्रसाद तुझ को ना पहुचै मन साथ साथ सिमरहु प्रभ ऊचे जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भागत करे जिह प्रसाद अभूखन पहरी जय मान तिस सिमरत क्यों आलस की जय जिह प्रसाद असव हस्त असवारी मान तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी
जे प्रसाद बाग मिलख तना राख पुरोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत साधत सहते आई तिसहते आए जो एक अलख इहां उहां नानक तेरी रखै जिह प्रसाद करह पून बवदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सासा चितारी जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर हो सदा अनूप जिह प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जिह प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जासुका है जिह प्रसाद सुनै करननाद जिह प्रसाद पेखै बिसमाद जिह प्रसाद बोलै अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सहजे बसना जिह प्रसाद हस्त कर चलै जिह प्रसाद संपूर्ण फलै जिह प्रसाद परम गत पावै जिह प्रसाद सुख सहज समावै ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागौ गुर प्रसाद नानक मन जागौ जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ कौ मूल न मनहु बिसार जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड़ तू ताको जाप जिह प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिस है जान मन सदा हजूरे जिह प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता सिवराच जिह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाऊ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्ब निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किन्हू लया जित जित लावहो तित लगै हर नाथ नानक इन कह कछु न हाथ सलोक आगम आगाद पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रगटे सो ज्ञान साध कै संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत निबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी साध कै संग अगोचर मिले साध कै संग सदा पर फुलै साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग नकत हूं तावै साध संग अस थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यों नहीं बैर साध कै संग न बीगा पैर साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग नाही हो ताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साध कै संग न कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बस अगोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साध कै संग बसै थान ऊचै साधु कै संग महल पहुँचै साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुरबान साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब निसतारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को बरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग सोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्ब थान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कछु काल दर्शन भेटत होत निहाल साध कै संग कलुखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहां उहां सुहेला साध संग बिशुरत हर मेला जो इच्छै सोई फल पावै साध कै संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उधरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाओ साध कै संग न मंते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संग गत पई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग
ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਆਵਰ ਨਾ ਪੇਖਾ ਏਕ ਸਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਆਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕਉ ਸੋਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕੌ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜਿਉ ਬਸੁਧਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਸਹਿ ਸੁਭਾਉ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਧਰ ਉਪਰ ਆਕਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ, ਮਨ ਆਪਣੈ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ।

देखै हाथ राह दूर। कथना कथि नावै तोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट। देदा दे लै दे थक पाही, जुगा जुगंतर खाही खाई। हुक्मी हुक्म चलाए राहु, नानक विकसै वे परवाहु। साचा साहिब साच नाए, भाख्या पाओ अपार। आखह मंगह देह दे, दात करे दातार। फेर की अगै रखी जित दिसै दरबार। मुहाओं के बोलन बोली है, जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच ना वड्याई विचार। करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानके वै जानिए सब आपे सचियार। थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावी है गुणी निदान। गावी है सुनिए मन रखिए भाऊ, दुख पर हर सुख कर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रिया सुमाई। गोरी सर गुर गोरख बरमा, गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, तीर्थ नावा जे तिस पावा। विण पाणी के नाई करी, जेती सिर ठो पाई। वेखा विण कर्मा के मिलै लई, मत विच रतन जवाहर माणिक। जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे यार जा, होर दसूनी होए। नवा खंडा विच जानी है, नाल चले सब कोए। चंगा नाउ रखाए कै, जस कीरत जगले। जे तिस नदर न आवई, तवात न पुछे के। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोए न सुजई, जे तिस गुण कोए करे। सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धरत धवल आकाश। सुने दीप लो पाताल, सुने पोह न सकै काल। नानक भगता सदा विगा, सुने दुख पाप का नाश। सुने ईश्वर ब्रह्माइंद, सुने मुक्साला हनुमंद। सुने जुग जुग तन भेद, सुने शास्त्र सिमृत वेद। नानक भगता सदा विगा, सुने दुख पाप का नाश। सुने सत संतोख ज्ञान, सुने अठसठ का स्नान। सुने पढ़ पढ़ पावै मान, सुने लागै सहज ध्यान। नानक भगत

नाथ जुग जुग एको वे सु एका माई जुगत वे आई तीन चेले परवार एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ओना नदर न आवै बहुता इहो विडान आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वे सु आसन लोए लोए भंडार जो किच पाया सु एका वार कार कर वेखै सिर जनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेस एक दूजी बहु लख होए लख होवे लख वेस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एत राह पत पवड़िया चढ़िया हुए कीस सुन गल्ला आकाश की कीटाया ईरीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखन जोर च पैने जोर जोर न मंगन देन न जोर जोर न जीवन मरन न जोर जोर न राजमाल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगति छुट्टे संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निसान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहु धर्म ज्ञान खंड का याको कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बर में काटत कड़िय है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोण आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाए जे को कह पिछे पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन महराम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना उह मरे न ठागे जाहे जिन कह राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लोक रह अनंत सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै तंत नंत तिथै लो आकार जिव जे हुकम तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीर सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खलागन तपताऊ भांडा पाओ अमृत तटाल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नान

मस्तुल निवासी सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध करता अदु ऊर्ध अर्धं अवगुण ओगहरता। सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध करता अदु ऊर्ध अर्धं अगंग ओगहरता। परम परम परमेश्वर प्रोज पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग चेदी अपे दीय नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तस्ततामंग। तेरा जोर चाचरी चांद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयाचंद अगाध्य अबाध्य अनंदी स्वरूपे। नमो सर्व माने सुमस्ति निदाने नमस्तुंग इंद्रनाथे नमस्तुंग परमाथे नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले। नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो

नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्णंग नमो सर्व रंगी त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धंग निवासी चरपट छंत्व प्रसाद अमृत कर्म्य अमृत कर्म्य अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता।

उदार मूरत जाओ नाद असेत देश और न भेष जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम हीन पेखत।

खेला खेल खेलनंत को फिर एक देव भेव न जानही जिबे दौर कतेव रूप रंग न जात पात सो जाने के जीव तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहील चक्र बकर फिरे चतर चक मा

पुरख पार सर बिस्वरच्यो सोयम भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सुपरम रहत भूत लख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूपम एक अनुष्ट एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर भंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंग अनात्म एक पुरख पात सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जा कह नेत भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र ना वही वह चित मद पार छंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्तिन अनाश

अंक कालान काल अनुभूत अंग आभा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन परिणाम निरपहने कामत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्म आदृश्य धर्म सर्व प्रणाढ्य अंडन।

नम्य त्रिपंगी त्रिकाम्य त्रिभर्गं त्रिबाध्ये अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है कि नरकं प्रणाश है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपांग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अवय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अभगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निश्चिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगाह है असंभ है अगंध है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट चंद त्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल चंत्व प्रसाद नमो नरक नास्ते सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात

समस्त कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसन उल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी दिहांद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसन उल जमाल है गनीमुल की राज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंक परनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकुं परनास है बहस्तुल निवास है कि सर्वुल गवन है हमेशा रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है आदेशुल अलेख है हमेशुल अभेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जरूरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मद पार छंत्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर पर पंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदा मंचित अंगासन अपांग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिश विश अपंड जल थल महंत दिश विश बेअंत अनुभव अनास त्रितरतुरास आजान बाहु कैसदाहु ओंकाराद कथनी अनाद खल खंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंचिज गात आजिज ना बात अंचंज गात अनरंज बात अंटुट पंडार अंडट अपार आडीठ धर्म अतटीठ कर्म अनवरण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है कल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कल खंड से परते पर है करुणा कर है जपा जप है तपा तप है अकृता कृत है मृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है कृता कृत है धरणी धृत है मितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नरनायक है खलकायक है विश्वंपर है करुणालय है नृप नायक है सर्पायक है पवभंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म

ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेपुते, कलंकार रूपे अलंकार लंके, नमो वास आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अक्षरी चंद अजय अलय अपय अभय भू अजू अनाश अकाश अगंज पंज लख अपक अकाल दयाल अलेख अभेख नाम काम गाह अटाह नाथि प्रमाथे अजूनी अमूनी नरागि नरंगे नरूपे नरेके अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रया चंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल नामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तल निवासी अजाय बेपूते गजाय गनी में हरियं करियं करिमुल रहीम में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पव शुभम सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अप

जी अग्न में आहार पहुंचावे, ओस नू क्यों पोहे न सकी, जिस नू अपनी लिव लावे, अपनी लिवा पे लाई, गुरमुख सदा संभाली है, कह नानके वड़दाता, सो क्यों मन हो विसारी है, जैसी अग्न उदर में है तैसी बाहर माया, माया अग्न सभी को जे ही करते खेल रचाया, जात इस भाणा ता जमया, परवार भला पाया, लिव चुटकी लगी तृष्णा, माया मुरवरताया, ए माया जित हर विसर मोप जय पाऊ दूजा लाया, कह नान गुर प्रसादी, जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया, हर आप अमूलक है मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए, किसै विटहु रहे लोक विललाए, ऐसा सतगुरु जी मिले तिस नौ सिर सौपी है, विचहु आप जाए, जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए, हर आप अमूलक है भाग तिना के नानका, जिन हर पल्ले पाए, हर रास मेरी मन बनजारा, हर रास मेरी मन बनजारा, सतगुर ते रास जानी, हर हर नित जपे हो जी हो, लाह खटे हो दिहाड़ी, इहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा, कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बनजारा, ए रसना तू अन रसराच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए।

सजे सजे दीवानांद्र अमृतमय बाणी श्री सुखमनि साहिब जी दे पाठ नित निम बाणिया दे पाठ होए गरीब नवाज आप जी की अगाध बोध बाणी पढ़दिया आप जी के दसरिया पासों हुई बेअंत बेअंत भुलना आप जी ने किमा कर देनिया अगे तो सावधानता बख्शिश करनी सिर ते मेर भरिया हथ रख के अपनी बाणी सुधते।

आज आप जी ने कृपा बख्शिश रहमत कीती है। सतगुरु जी अज जेठ महीने दी प्रारंभता हुई है, सतगुरु जी आप जी ने कृपा करनी आउन वाला समा समूह संगतां लई सुखां भरिया रहमतां भरिया खुशियां भरिया रखना। सतगुरु जी रहमतां करनियां अपने दर घर दे नाल जोड़ के रखना। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी बेअंत संगतां ने संग्रांद दे दिहाड़े नूं मुख रखदिआं अमृत वेले नूं मुख रखदिआं आप जी के दर घर दीआं हाजरियां भरियां पेटावां अर्पण कीतियां रहमत करनी। समूह संगत दीआं हाजरियां पेटावां दर प्रवान करनियां। दरों करो नाम दान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना घरां विच सुख वरताउणी बच्चियां दे सिर ते मेर भरिया हथ रखना।

अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे है गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे है गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, जैत श्री महला पंजवा। कोई जन हर स्यों देवै जोर, चरण गहूं बकों सुभ रसना। दीजह प्राण अकोर,

तन महिंडात लिखाग जे मिले तमस्तक लाई है। कूड़ा लाल छड़िया हो एक मना लख त्याई है। फल ते वे हो पाई है जिवे हिकार कमाई है। जे हो वै पूर्व लिखिया ता धूड़त ना दी पाई है। मत थोड़ी सेव गवाई है, मत थोड़ी सेव गवाई है।

ओड़ी तुरे पलाने कौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडमबाड़िया लाए बैठे कृपा सारिया चीज करण मन भाम दे हर भुजन नाही हारिया कर फरमाए सिखाया वेख मैल तमरण मसारिया जर आई जो बनहारिया जर आई जो बनहारिया।

नानक इहा सुख आगा मुख उजल संग संतन का पय हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के तक हर हर गय नानक इहा सुख आगा मुख उजल संग संतन का पय वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी हर जेठ जुड़ंदा लोड़िया जिस अगर सब निवाना हर सज्जन दावण लग्या किसे न देई बना हर जेठ जुड़ंदा लोड़िया जिस अगर सब निवाना हर सज्जन दावण लग्या किसे न देई बना माणक मोती नाम प्रभ उन लगा नाही सन रंग सभे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से कहिय धन अपन लिया जे मिला बिछड़ क्यों रोबन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस तनी जिसका भाग मथन हर जेठ रंगीला तिस तनी जिसका भाग मथन वाहिगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जुगो जुग अटल तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी अति सत्कारयो साध संगत जियो वड्या भागों वाले हो रोजाना अमृत वेले अपने रजेवियां विचों कुछ समा कढ सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ बैठ के अमृत बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करके अपने इस मनुखा जन्म नूं सफला करन दा उपराला उद्यम करदे हो अज भी सतगुरां बख्शिश कीती सबाक समा सतगुरां दी मेहरामत सदका सानू सारिआं नूं सत संगत विच जुड़न दा नसीब होया।

प्रणवत नानक नागी दाज है, फिर पाचे पछुतानिता। गौड़ी चेती महला पहला, औखद मंत्र मूल मन एक है। जेकर दृढ़ चित की जय रे, जन्म

भगत करहै मूर्ख आप जनाव है, नच नच टप्प है बहुत दुख पाव है, नचे टप्पे भगत न होए, शब्द मरे भगत पाए जन सोए, भगत वच्छल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विच हो आप।

रहाओ। जह सतगुर तह सत संगत बनाई, जह सतगुर सहजे हर गुण गाई, जह सतगुर कहा हौ मैं शब्द जलाई, गुरमुख सेवा महली था उपाय, गुरमुख अंतर हर नाम वसाय, गुरमुख भगत

सहज भवै प्रभ सब नीथाई, कहा गुप्त प्रगट प्रभ बणत बनाई, आपे सुतिया दे जगाई, तिसकी कीमत किने न हुई, कह कह कथन कह सब कोई, गुर शब्द सुमावै बूझे हर सोई।

बैरागण जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही। जैसे धरती मध्य पानी परगासिया, बिन पगा वरसत फिराही।

तत स्यो मिलया पुनरप जन्म न आई। गौड़ी बैरागन महला तीजा सब जग काल वस है बादा दूजे पाहे। हमें कर्म कमाव दे मन।

मत मलीन प्रगट भई जप नाम मुरारा सेव सकत मिटाइया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिनको लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पा

हर रस गुर ते पाया, मेरा मन तन लीनी धन धन गुर सतपुरख है, जिन भगत हर दिनी जिस गुर ते

नंदन प्रथम राग पहरुवे करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुनिया से लेखी की पई बारी पहरो की पाचो नारी

संतां के कार्य आप खलोया, हर कम करावन आया राम। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया। प्रहलाद चंचल राख लै हर जियो, हर नाकश मार पचाया। सतगुर सच्चे पातशाह ने महान महान बख्शिश कीती है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे दे महावाकां अनुसार। सेवक परिवार सुरगवासी सरदार जसवंत सिंह जी, सुरगवासी बीबी सुरजीत कौर, तिना दी पोत्री सारा, तिना दी फुलवाड़ी, सरदार महेंद्रपाल सिंह जी, बीबी चरणजीत कौर, तिना दी लाडली सपुत्री, बेटी एक जोत कौर दे विआह कारजां दी सफलता वास्ते सेवक परिवार ने सतगुर सच्चे पातशाह दा ओट आसरा तकदे आ तुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाए जीव दे। श्री सहज पाठ साहब आरंभ करके आप ही सारे परिवार ने प्यार सहित बाणी पढ़ी, एक एक अखर करके अमृत बाणी का रस चख्या, बाणी नू अपने हिरदे च वसाउण दा जतन कीता। जवाब बाणी पढ़नी है, विचार के पढ़नी है, रस लै लै के पढ़नी है, उसका आनंद वखरा ही होया करता है। सेवक परिवार ते सतगुर सच्चे पातशाह ने बख्शिशां कीतियां, रहमतां कीतियां। आप सेवक परिवार ने आद तो मद तो अंत तक बाणी पढ़ के अज गुरुद्वारा साहिब विखे शरदा भावना दे नाल भोग पवाए हन। जिहड़े शरदा भावना दे नाल बाणी पढ़दे ने, अरदासां करदे ने, वह गुरु नूं अपने वस विच कर लैंदे हन, क्योंकि गुरु परमेश्वर अपने सेवकां दे अधीन हो जांदा है। साहिब की बाणी आखदी, हरदासन को मित है हरदासन स्यों प्रीत, हरदासन के वस है जो जंती के वस जंत, हर के दास ते आइंदे कर प्रीतम स्यों ने हो। कृपा करके सुनो प्रभ सब जग मह वरसे में हो। जो हरदासन की उस्तत है सा हर की बड़ियाई, हर अपनी वडियाई भाम दी जन का जयकार कराई। वाहिगुरु परमेश्वर अपने सेवकां दे अधीन होकर के अपनी वडियाई परमेश्वर नूं पाउंदी है, चंगी लगदी है। ते जो परमेश्वर दी वडियाई करदे ने फिर उन्हां जनां दी सतगुरु आप जयकार कराउंदे ने। साहिब कहिंदे हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई। सेवक परिवार ने सतगुरु जी दा ओट आसरा तकदिया, क्योंकि साहिब कहिंदे कीता लोड़िए कम सो हर पै आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखिए। मन की बिरथा होए सो गुर पह अरदास कर। जिहड़ी मन दी भावना इच्छा है, साहिब कहिंदे गुरु चरणा विच आ के अरदासां कर। जिहड़े अरदासां करदे हन साहिब कहिंदे फिर तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिघन न को लागै जाके प्रभ आगै अरदास। उस कारज दे विच फिर सतगुरु कहिंदे ने विच करता पुरख खलोवा, वाल ना मिंगा होवा, मज्जन गुर आंदा रासे, जप हर हर कलिखनासे। अपने सेवक की आपे रख है, आपे नाम जपावै, जह जह काज किरत सेवक की
ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠਦਾ ਵੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਟਾਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਆ। ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਜੀ।

आओ जी सारे पावन पंक्तियां गुरमुख परिवार आप जी ने समागम विच हाजरियां भरिया ने। भाई हरभजन सिंह जी लहरी उन्होंने कीर्तन दियां सेवावां निभाईयां ने, सब दे घरां विच सुख बन जाए। महाराज कहिंदे ने सुख उहदे नाम विच ही, भावें अज मन लो ते भावें कल मन लो, सारे दुखां दा इलाज भी उहदा नाम है ते सारे सुखां दा इलाज भी उहदा नाम है। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधिए पूर्ण सतगुरु ज्ञान। एक पासे गुरु अमरदास जी कह रहे ने सारे दुखां दा इलाज तेरा नाम है, तेरे घर दी सेवा है, तेरा कीर्तन बाणी नितनेम है। एक पासे महाराज कह रहे ने साचे साहिबा क्या ना ही करते है, करता तेरे सब किच है, जिस दे जेड़े तेनू पा जांदे ने, जेड़े तेनू चंगे लगदे ने, तू उन्हां दीआं झोलियां भर भर के भेजदा है। सो ए पावन पंक्ति एक वारी गा लो, तुसी भी संग्रांद दा दिहाड़ा है दाता, साडे घर विच तेरे नाम दी वरखा हो, हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है, जिस अगे सब निमन, हर सज्जन दावण लगिया किसे ना देई बन, हर महीना तेरे नाम नाल तेरे घर दे दर्शन दीदार नाल बतीत हो। कोशिश करे सारे गा सको।

समाप्ति है। ये पावन पंक्तियां कवारी सारी गा लो, संग्राम का दिहाड़ा है। महाराज कहते ने कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद विच रज रज के बैठ के उदे गुण गायन करो, फिर तेरी रसना कर्मा वाली बन जाएगी, भागा वाली बन जाएगी। भैणा भी वीर बजुर्ग बैठे ने, गुरु अमरदास जी कह रहे ने तेरे प्यार विच प्रेम विच कोई कमी ना होवे। हट्टी गुरु नानक दी अज भी खुली है, सारियां खुशियां सारियां बख्शिशां मिलदियां उन्हां नूं जिहड़े प्यार विच तैनूं याद करदे ने।

तहीं प्रकाश हमारा पहो, पटना शहर बिखे पौलयो। तन तन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हां दा प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हां। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती से साहिब जी का प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साह जिहड़ा अंबाले के नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहिंदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया का मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तां आपां सारे करदे हां, पर बंदगी इहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा ना ही दूर। जो इहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साहिब कहिंदे ने तीन महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोकी यात्रा करया करदे सन, तुर पए, तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउन दे। जदों उत्थे पहुंचे, दर्शनां दी इजाजत मंगी ते नाल कहिंदे ने दो कुजियां विच परखण लई वी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हथ रखना कीता। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार के भले लई दोस्त दोखियन पकर पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता ते बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार। साड़ी रखिया, साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे। दीन आख दिन जिदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान, आए ना जाई थिर सदा गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साडे लई
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।

छोटे साहबजादे माता गुजरी जी नाल चले गए और सिंघा ने भाल शुरू कर दी। और उस समय दे हाल नू बयान कीता है। दसम पातशाह फरमा रहे ने